0: बेस के नहीं, सब कैमरा है रेंज पे फेक एंड अकाउंट होगा।
1: Right square thing at step one.
0: Ticketing issue.
1: There are two cameras now.